0: गौर सेना रखत्री का नमस्कार। आइए छाया गीत में प्यार से प्यार करें।
1: मुझे इसकी परवाह नहीं।